0: हाथ उठाना उठाना।
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: टेस्ट ट्यूब ले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
7: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।

0: is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah.
1: No new music. No
2: new 100.
3: I want you to love me.
4: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: Cool King।
7: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
6: लगाओ Cool King हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। Cool King हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
8: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
8: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: This program is brought to you by
12: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64 lakhs 49,000.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: कूल किंग,
4: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: अस्सलाम वालेकुम.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहाँ खा वहाँ HBL।

वेलकम बैक जी जनाब, है योर आरजे रहीम शहजादी। मेरा आपका साथ रहने वाला ठीक दोपहर एक बजे तक का। इस साथ को बनाइए खूबसूरत और हमारे साथ रहिए, जल्दी से आ जाइए जी। क्या कर सकते हैं आप लोग ऐसा कर सकते हैं जी, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसे भेज देंगे 3636 पे।

के दिनों में ईद जो है वो बड़ी जो है यूजुअली गर्मियों में ही आती है, तो अब मई जून में आई है तो मौसम कुछ अंदर बाहर हो रहा है, यानी कि कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है. तो आप लोग जो हैं वो गोश्त का इस्तेमाल जो है वो उसके मुताबिक करें और अपने स्टमक का बहुत ख्याल रखें. हम आपके साथ हैं जी ठीक दोपहर एक बजे तक के लिए. इस आद को बनाइए खूबसूरत, जल्दी से आ जाइए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए. हेयर वी आर, हेयर वी आर, हेयर योर आर जयराम शहजादी, FM 100 से लाइव आप हमें सुन रहे हैं.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: कूल किंग।
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा।
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल

और जी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, हम सबको कहना चाहेंगे, आप सब लोग कहाँ पर हैं? वेयर आर ऑल ऑफ यू? जितने भी लोग हमें सुनते हैं, हमारे नए पुराने सब लोग जी, हम किसी को नहीं भूलते और ना ही भूलेंगे इंशाल्लाह। सो जल्दी से आ जाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि आज के प्रोग्राम में ढेर सारी बातें होनी है। जी आज हम प्रोग्राम में बातें करेंगे ढेर सारी, और इन ढेर सारी बातों में जो सबसे बड़ी बात है, द डायलेमा ऑफ द एज, और इस एज का जो भी फिनोनिमा डायलेमा चल रहा है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जी, जिसमें होम डिकोर से लेके होम पर्सनैलिटी डिकोर तक, इसमें सारी बातें की जाती है। स्टाइल हैंगओवर में आप सुन रहे हैं आरजे रम शहजादी को, मेरा आपका साथ रहने वाला है जो ठीक दोपहर 1 बजे तक का। आप सब लोग हमारे साथ आ सकते हैं जी। क्या करना है जी, आपने क्या करना है, 3 6 3 GB मैसेज करना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 3 6 3 GB। और जी ईद उल अजहा जैसे कि गुजरी है, तो आप सब लोगों ने सफाई का खास ख्याल रखना है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा इकदाम किए गए हैं कि सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए, बट फिर भी इंडिविजुअली हम पाकिस्तानी हैं, तो हम सबको जो है वो अपने अपनी जगह पर खड़े होकर सफाई का बहुत खास ख्याल रखना है। बिकॉज कुर्बानी का यही तो मतलब होता है, कुर्बानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जहां पर हमने भेंट चढ़ाना है, ये जानवर ही सिर्फ कुर्बानी के लिए नहीं है, बल्कि हम सब ने अपनी हर चीज को, वो जिसे कहते हैं आपने अपनी सबसे खूबसूरत चीज कुर्बान करनी होती है, इसी का नाम मोहब्बत है मेरे ख्याल में। बिकॉज मैंने ये बहुत सुना, बट आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का मतलब भी समझ आ रहा है। और कभी कभी लगता है इट्स वेरी डेंजरस टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। अगर हम इसको समझें तो बहुत बड़ा सा अपना आप लगता है और बहुत छोटा सा खुद का जर्फ लगता है। बट आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग शामिल हो जाए प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा है। वी आर हेयर, हम सब लोग मिल बैठ के यहां पर बातें करेंगे और जो बातें होंगी बहुत जबरदस्त। बाकी जो है इस वक्त की, तो ये वक्त जो है वो एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, बेजार सी नस्ल तैयार कर रहा है, जिसमें लोग जवानी में अंदर से बेरू होते जा रहे हैं, तन्हा और उकताए हुए होते जा रहे हैं। वाय बट जी, सबको यही मैसेज है कि डोंट गिव अप। सो आपने गिव अप नहीं करना, आपने क्या करना है कि आपने हालात से लड़ना है, यही जिंदगी है जी। यस, सो वी विल बी बैक, बट एक छोटा सा सॉन्ग ब्रेक है, आई विल बी राइट बैक।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: वंस अगेन वेलकम बैक जी, जनाब है युवराज अरम शहजादी। तो वक्त आ गया जी आप सब लोगों के प्रोग्राम का जो है वो आगाज किया जाए। मेरे प्रोग्राम का आगाज तो 10 बजे से हो गया, अब आपके प्रोग्राम का आगाज, बिकॉज इसमें हम आपके मैसेजेस रीड आउट करेंगे और आप सब लोग जो जो भी हमारे साथ शामिल हैं क्या कह रहे हैं, किस तरह से आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, वी ऑल डिस्कस हियर। सो जल्दी से प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। आपने करना कि आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, LHR लिखना है, स्पेस देना है और भेज देना है 3636 पे।

Welcome back, जी हेयर योर आरजे रम शहजादी. कैसे आप सब लोग? हेयर योर आरजे रम शहजादी मेरा आपका साथ रहने वाला है ठीक दोपहर एक बजे तक का. और इस साथ को बनाइए खूबसूरत और जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आप सबका साथ हमारा जो है वो सबसे हम सब लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होता है. बिकॉज आप सब लोग होंगे तो मिल बैठ के बातें करेंगे और खुशियां बांटेंगे. तो फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं समझ आ रही थी, वो समझ आना शुरू हो जाएंगी. सो जनाब हरी अब ज्वाइन अस ऑन FM 100. मैं हूँ आपके साथ आरजे रम शहजादी. आपका सहल और आसान गुजरे सफर अगर आप सफर कर रहे हैं, और इस सफर में आप सब लोग अगर हमारे साथ रहें, अगर आप ज्वाइन कर लें FM 100 को, सो आपका सफर बहुत साल और आसान गुजरेगा. जो ईद गुजरी है कुछ उसके बारे में बातें होंगी और कुछ बातें होंगी जी. हम जर्नल फैक्ट्स शामिल करेंगे. हम सब वो लोग जो कि 2026 में अभी भी आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि वी आर स्टक, हम कहीं ना कहीं जो है ना स्टक हो जाते हैं. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शामिल करेंगे, कुछ रियलिटीज को शामिल करेंगे.

Welcome back to season 9. बात कर रहे हैं आज हम कुछ मुश्किलात की और कुछ अच्छे हालात की. तो कहते हैं जी अच्छे हालात आसानी हर परेशानी के बाद आसानी होती है, कहते भी हैं और ये हमारा ईमान भी है.

0: वेलकम बैक जी, जनाब है योर आरजे रमशहज़ादी और आज हम बात करने जा रहे हैं जी, बहुत जबरदस्त टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया है। जरूरी नहीं है मैं पहले से कुछ भी डिसाइड करके आई होती तो मैंने सोचा कि अभी डिसाइड करें, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट के वो पीपल द पीपल those people वो लोग who face trouble, तो क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, जो ट्रबल्स को फेस करते हैं, जो परेशानियों को फेस करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में कि आप लोग और हम सब लोग लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं जी। मैं आज की बात ये क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मौजूदा वक्त की जरूरत है। ये एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो सेंसिटिविटी हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आ गई, हमारी यंग जेन जी के अंदर जो भी हमारी जनरेशन है, जी जेन चल रही है, जेन जी, जी जेन जो भी कुछ कह लें, जेनरेशन जी चल रही है, जेन जी, तो दे आर सो टू मच सेंसिटिव, और उनको हर चीज जो है वो मेरे ख्याल में ऐसी चीजें डेवलप हुई मिल गई हैं, एक दुनिया ऐसी मिल गई है कि जिसमें वो रह के अपने आप को पता नहीं क्या ही कंसीडर कर लेते हैं इन द रेट ऑफ ट्रबल्स बिकम ट्रिपल, मेरे ख्याल में एक के बजाय तीन गुना बढ़ गए हैं, मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। ऐसा ही है, हर किसी की जिंदगी में। सागर अली हमारे साथ हैं जी, कमल नाज ने बड़ी जबरदस्त कमेंट्स किए हैं, हम उन सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, मैसेज किए हैं, मैसेज हम आपके साथ साथ रीड आउट करते हैं, बिकॉज ये हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे जितने भी लोगों ने टॉक आउट किया है हम उन सब की बातें करते हैं जी। हाजी सनाउल्ला खान जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो वेरी मच। और इरम, जो लोग कुर्बानी देना जानते हैं वो लोग अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर बहुत कुछ जीत जाते हैं, दैट्स वंडरफुल, लेकिन जरूरत है मेरे ख्याल में कमल नाज जी आज की हमारी जनरेशन को समझने की, बिकॉज दे आर टू मच सेंसिटिव इन माय ओपिनियन, एंड यू आर गोना एग्री विद मी। आप जितने भी लोग हैं मेरे साथ एग्री करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो हमने अच्छा रखा है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं किसी की इस्लाह हो सकती है, या मेरी हो सकती है, या आपकी हो सकती है, सो ये सारी बातें। अपनी अना और अपने नफ्स की कुर्बानी भी देनी चाहिए, कमलनाथ हमारे साथ हैं। हाँ इरम, वो जिंदगी क्या जिसमें कोई चैलेंज ना हो, दैट्स वंडरफुल ना, बिल्कुल ऐसा है जी। सागर अली हमारे साथ हैं, कुछ अशार के ढारस में उन्होंने हमें बहुत सी बातें लिख दी। जिंदगी से सुलह कराओ मेरी, जिंदगी से सुलह कराओ मेरी, ऐसी हालत ना तुम बनाओ मेरी, है ये दुनिया उजाड़ सदियों से, फिर से दुनिया जरा बसाओ मेरी, जानता हूं मैं खुद को अच्छी तरह, दास्तां मुझको मत सुनाओ मेरी, अश्क में हादसों से कहता फिरूं, आके ढारस जरा बंधाओ मेरी, दैट्स वंडरफुल। मोहसिन हमारे साथ हैं जी, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते हैं मगर उनकी यादें कभी रुखसत नहीं होती। ओके, वो अचानक किसी खामोश रात में दिल के दरवाजों पर दस्तक देती हैं, यूं महसूस होता है जैसे वीरान मौसम में बाहर उतर आई हो। एग्जैक्टली जी, बहुत से लोग आपकी जिंदगी में बाहर की तरह होते हैं, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सब कुछ मादी चीजें नहीं होती, सम पीपल आर वेरी रियली रिलेइंग फॉर यू, वो उनका आपकी लाइफ में होना जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग है जी। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ मतलब पैसा या जर जमीन ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो माने रखती हूँ, हमें इन चीजों की बहुत जरूरत है और हमें इन चीजों के ऊपर जोर देने की बहुत जरूरत है, बिकॉज दैट कि हम अगर इन चीजों को नहीं इन्हांस करेंगे सो दैट्स वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने।
1: It's 11:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.

Welcome back. This is Nam here, Rajiran Shehzadi, 11:28 AM. और मैं हूँ आपके साथ FM 100 से लाइव. आप हमें सुन रहे हैं और जी कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं जल्दी से बताइए. टैग विद योर सिटी विद योर नेम एंड what you doing. Also tell us, क्योंकि आप हमें बताएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि आप क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है आपका. और जी जैसी सिंह जी कैसी आप जी. मैं ठीक वधिया. वेल चढ़ दे लेंदे पंजाब जिन्हें भी सुनने नाले ने सारे सुनने नालियां नु कहना चाहवांगे जी. बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्ते और जी अस्सलाम वालेकुम और जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात. मेरी प्यारी बहन, आपको ईद मुबारक. आपका ईद कैसे गुजरा? उम्मीद ठीक ठाक गुजरा होगा जी. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. और आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ जी कि आप अपने साथ वालों को भी बताइए और शेयर किया करें. प्रोग्राम चल रहा है जी. इस तरह से क्या होता है जी, एक दूसरे जब हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. देखें जितनी स्ट्रांग हमारी ये वाली है ना, है नहीं उत्थे प्रोग्राम चलता पे सुने जितना हमारा बीबीसी ये जो है ना वो क्या कहते हैं तेज है, मेरे ख्याल में इतना कोई और प्लेटफॉर्म तेज नहीं होता है ना. ऐसा ही है ना. ओके जी 11. ओके वी आर ब्रेक फ्री नाउ. हम बातें करेंगे ढेर सारी जल्दी से.

मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, मैंने ये पूछा है कि क्या आपको मेरा ये प्रोग्राम इस तरह से अच्छा लगता है, बिकॉज हम लोग फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ हल्ला गुल्ला भी करते हैं, बट ज्यादातर मेरा जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि एनीथिंग, ऐसी कोई अच्छाई है, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई एस्पेक्ट जो मेरी जात से रिलेटेड आप सब लोगों की लाइफ में कोई अच्छी चीज लेके आ सकता है, तो वो मैं करूं। बहुत वधिया जी प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जय सिंह जी, तुसी अपनी जिंदगी विच वधिया होंगे। दसो जी किदा हो, तुसी वेलो ठीक हो, और किस तरह कारोबार काम चल रहा है, थोड़ी जिंदगी विच की चल रहा है, साडे नाल शेयर जरूर करो। आज ही बातें हो रही हैं कि लाइफ में जो हमारे ट्रबल्स होती हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे जवान बूढ़े जिन्होंने अपनी जिंदगी में मिसालें कायम की हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को प्रॉब्लम से निकाल कर, जिसे कहते हैं ना, उनको लेके आए हैं वो अपनी रियल लाइफ में, जिसे कहते हैं कि वो रियलिटी में, जिन्होंने अपनी लाइफ को एक पैराडिज्म पर सेट किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में मिसालें कायम की हैं, आखिर वो क्या लोग थे, उनकी क्या हिस्ट्री थी। बिकॉज हम हर टाइम यही बात करते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जलील मस्तूरी हैं जी, नाइस शो फ्रॉम रहीम यार खान, थैंक यू सो वेरी मच, आई एम मच ओब्लाइज्ड दैट कि आप सब लोगों को मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। FM 100 से आप सुन रहे हैं आरजे रम शहजादी को। फिर आपका साथ रहने वाला है जो ठीक दोपहर 1 बजे तक के लिए। यस, प्रोग्राम फॉर्मेट शुड बी ऑन रियल एंड सेंसिटिव प्रैक्टिकल लाइफ। यस, आई वॉन्ट दिस, बट समटाइम हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी हो जाते हैं, फैडअप भी हो जाते हैं ना, बिकॉज एक इंसान है ना, फितरत में हमारी तब्दीली रखी गई है, जिद्दत रखा गया है कि हमें जो है वो जिद्दत पसंद भी होना चाहिए, हमें तब्दीलियां भी होनी चाहिए। हम वेरिएबल्स हैं, वी आर नॉट कॉन्स्टेंट। हमारी जिंदगी में जो है ना, मतलब मुस्तकिल मिजाजी भी होनी चाहिए और तब्दीलियां भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि तब्दीली कायनात का हिस्सा है।

मैसेज कर सकते हैं जी आप लोग 3636 पे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 3636 पे। मैं हूँ आरजे रमशे आजादी आपके साथ ठीक दोपहर 1 बजे तक के लिए। हमारे प्रोग्राम में गाने भी होते हैं जी, सॉन्ग्स भी चलते हैं, टॉपिक भी होता है बहुत जबरदस्त, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं भाई, कुछ लोग एग्री कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे होते हैं, एंड आई लाइक दिस थिंग। देखिए जी हम हर इंसान जो है वो नेचुरली डिफरेंट पैदा किया गया है। मैं कुछ राय रखती हूँ, आप लोग उससे मुत्तफिक नहीं होते, ये मुझे बात पसंद है। जो सारे मैं जी जी कहने वाले हैं वो तो भेड़ बकरियां हुए ना तो भेड़ बकरियां हलाल हो गई हैं अब तो वो हमारी जो है ना बैलियों में बोली मैं। अच्छा आपको बकरा खा के कहीं मैं वाली तो नहीं आ रही

और किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यानी कि ये जो हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन है और आप उनको बैलेंस करना जानते हैं, दिस मीन यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर नॉट जस्ट ओनली इंटरोगेटिव पर्सन भी होते हैं, जस्ट नॉट ओनली द क्वेश्चन इंटरोगेटिव ना पर्सन भी होते हैं लाइफ में, नेगेटिव लोग भी होते हैं. और अगर हम आलमी जायजे की बात करें, आलमी मेयार का जो एक जिसे सर्वे कहा जाता है उसके बारे में बात करें, तो उसके मुताबिक 99% पीपल वो लोग जिनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोग सबसे ज्यादा लाइफ को एंजॉय करने वाले होते हैं. वो लोग ज्यादा, उनकी जो बिल्डिंग होती है, बेस बिल्डिंग जो होती है उनकी, बहुत वीक से शुरू होती है, यानी आप बहुत कमजोर होते हैं और फिर एक दिन आप बहुत मजबूत बन जाते हैं. बहुत सी ट्रबल्स आती हैं, बहुत सी ट्रबल्स का सामना करने के बाद फिर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आती है कि आपने उस कमी को, देखें जिसने कमियां देखी हैं उसी को तो पता है, जिसने जिसके घर में सुराख होंगे बारिश आएगी और उसको तो पता है छत में कहां कहां से सुराख है और कहां कहां मैंने मट्टी लगानी या सीमेंट लगाना है, कहां से सुराख को बंद करना है. जिसकी छत पक्की होगी उसको क्या पता. तो इसी तरह लाइफ में भी बहुत सी ऊंच नीच आती है और आपको समझ आ जाती है कि आपने कौन सा सुराख बंद करना है और कौन सा जो है सुराख जहां से आपके बेड के ऊपर या आपके जो है वो बिस्तर के ऊपर बिस्तर गिला हो सकता है और आपकी नींद खराब हो सकती है. तो वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कमियां देखी हूं वही लोग होते हैं जो कि जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं. सक्सेस जो है ना, उनकी कामयाबी उनका हिस्सा बन जाती है. इब्राहिम लंकन है, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं. मैं ब्रूसली को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ. येस्टरडे आई वॉज वॉचिंग हर शॉर्ट्स में उसके कुछ ऐसी शॉर्ट्स, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देख रही थी जिसमें मुझे बड़ी भरपाई हुई इस चीज का. मुझे बड़ा हौसला हुआ कि यार लाइफ में कहीं भी कोई भी चीज जो है उसने बहुत मेहनत की और मुसलसल की. द मेन थिंग इज मुसलसल, कंटिन्यूसली. यस, अगर हम कोई काम जो है वो कंटिन्यूसली नहीं करते फिर नहीं कुछ भी होता, मुसलसल. और फिर ये हमें नहीं पता कि कब कहां क्या होना है. हम लोग बड़ी जल्दी स्पॉट्स लगा लेते हैं, ये कर लिया इसके बाद बस अब ये होना है. मतलब ये हमारी अपनी लाइफ है ना, हमने डिजाइन किया हुआ है. देखिए साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ये शो कराती है कि सफरिंग इज ऑफन दैट कैटलिस्ट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिलियंस. द ग्रोथ परसेंटेज जो होती है स्टडीज जो है वो 50% to 67% ट्रॉमा सर्वाइवर्स जो होते हैं ना वो ऑन द एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट पॉजिटिव पोस्ट ट्रॉमैटिक ग्रोथ. यानी कि मतलब अगर मैंने साइंस को भी रिसर्च किया तो उसके मुताबिक भी ट्रॉमेटिक जो ग्रोथ है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है, उसमें 50% to 67% जो लोग हैं वो लोग जिन्होंने बहुत लाइफ में ट्रॉमा, जैसे कहते हैं ना बड़ा ट्रॉमा होता है जी, हमारे बच्चे छोटे छोटे, मतलब हमें तो छोटे बच्चे ही लगते हैं यार. ये जो आजकल हमारी जनरेशन है वो घड़ी घड़ी ये अल्फाज यूज करते हैं, जी हमें ट्रॉमा हो गया, जी हमें ये प्रॉब्लम हो गई. ट्रॉमा होता क्या है? आर यू क्रेजी अबाउट दिस? ट्रॉमा है क्या? प्रॉब्लम्स हैं क्या लाइफ की? हैवंट यू सीन दिस? आपको एक छोटा मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने लेसन में कहीं पीछे रह गए हैं, तो ये ट्रॉमा नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रॉमा. सो हमें ये सारी चीजें अपने बच्चों को समझानी है. बहुत बोल लिया, अब चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब. आई विल बी राइट बैक, डोंट गो अवे.

वेलकम बैक जी जनाब, कैसे आप? और जी, थोड़ा प्रोग्राम में फन भी होना चाहिए, और फन करने के लिए हम आपके साथ हैं मौजूद। और जी, हमारी जो मूवियां थी, आप सब जानते हैं हमारी मूवियां कौन सी, जो हीर रांझे की हीरे, हाँ हीरे तू मेरे दिल दे टोटे टोटे कर छड़े ने हीरे तू, आज जन्ने दिना बाद प्रोग्राम में चाहिए। तो जनाब, हीर ते रांझे दी स्टोरी जो हमने सुनी, और उस स्टोरी में एक काटो भी होता है ना, एकदम शलवारमा रज्जो नहीं हीर खांदी। अच्छा, ओह माय गॉड, हाँ हाँ हाँ।

वी आर बैक. और जी हीर हीर मैनू याद आ गई है. हीरे तू आज अन्य दिना बाद आई है. हाय हीरे हाय हीरे मैं गुड़ खा के मर जावा. गुड़ नहीं वड्डा गोश्त खा के. हाय बकरे दे पावे थे हाय. ओ माय गॉड. मुड़ के फिर तुसी कहना है वड्डा गोश्त खा के हाय वे जालमा कोका कोला पिला दे. भई होन जदो बकरे ले लेने हजम नहीं होना जदो वेड़ा करना. ना राणो ना. इंज ना बोली नहीं ते सुनन वालिया नू भूख लग जानी है. ओ माई गॉड. थोड़ा सा ड्रामा भी हो जाए इस ट्रामा में हम थोड़ा सा कर लें ड्रामा. जी मैं हूँ आपके साथ आरजे रम शहजादी. और मेरा आपका साथ रहने वाला है ठीक दोपहर 1 बजे तक का. इस साथ को बना लीजिए खूबसूरत. आ जाइए जल्दी से हमारे साथ. कुछ पल जो हम समेट लेते हैं कुछ पल जो हम अपने साथ ले जाते हैं वही जिंदगी के पल है मेरे ख्याल में. थैंक्स गॉड कि आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं. मुस्कुरा लीजिए. अगर कुछ खो गया है तो जिसके नसीब का था उसको मिल गया शायद. मुस्कुरा लो. अगर है थाली में खाना है सर पे छत है बदन पे कपड़ा है थाली में खाना तो घर बांट कर जाना. मुस्कुराओ. अगर कुछ खो गया जिसके नसीब का था उसको मिल गया शायद. मुस्कुराओ. अगर आज परेशान हो तो कल खुश भी हो सकते हो. मुस्कुराओ ये सोचकर जब ये परेशान हो जाते हो कि ये हो जाता वो हो जाता तो अच्छा हो जाता. मुस्कुराओ ये सोचकर कि अगर इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता. मुस्कुराओ अगर ये सोचकर परेशान हो जाते हो कि दिल टूट गया है. आए हाय. मुस्कुराओ ये सोचकर कि किसी का तोड़ना जब होता है किसी के जोड़ने के लिए ना तो किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद है ना. तो मुस्कुरा लीजिए ये कहकर कि जिंदगी से हमने मुस्कुराना ही सीखा है.

ओके जी आप सब लोगों के साथ मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा जी ठीक दोपहर 1 बजे तक के लिए, और इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए बहुत आसान सा राह रास्ता है, बहुत ही आसान तरीका है जी। आपने कहीं जो है वो लोड शोड करवाने नहीं जाना, आपके मोबाइल में इतने मैसेजेस के लिए तो पैसे होंगे ना जनाब, आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 3-6 3-6 भी, जैसे बाकी सारे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जी।

अच्छा जी, हंसी इत्थे कोई रोला रप्पा लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। हाँ जी, एक दूसरे के साथ आप इख्तलाफ रख सकते हैं। मैं एक बंदा बात करे दूसरे को नहीं समझ आती, बट जैसे कहते हैं ना कि हम ये कहें कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है दूसरा बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो हम सबको साथ लेके चलते हैं।

ओके जी, मुझे जल्दी से ये बात बताएं कि आप लोग जो हैं वो आप सब लोगों ने कुर्बानी की और किस किस ने कुर्बानी नहीं की थी। कुर्बानी की भी शक्लें होती हैं जी, अपनी आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी और आपने उस बात को बर्दाश्त किया वो भी कुर्बानी होती है। आपको कोई पर्सन अच्छा नहीं लग रहा आप फिर भी उसको वेलकम कर रहे हैं ये भी कुर्बानी होती है। बट जर्फ की बात है ना, कुछ लोग नहीं जर्फ अपना दिखाते और वो उसके बर्तन में वो कहते हैं ना जो कुछ होता है आपके बर्तन में वो सारा कुछ झलक जाता है, आपके बर्तन में क्या है वो सब झलक जाता है। तो देखिए बातों की हद तक तो हम सब लोग तीर चला लेते हैं लेकिन बिंग प्रैक्टिकल हम लोग करते क्या है ये सारी चीजें बहुत माने रखती हैं। छोटा करें कम करें बट बी प्रैक्टिकल।

मैं हूँ आरजे अरम शहजादी आपके साथ ठीक दोपहर 1 बजे तक के लिए मेरा आपका साथ है। जल्दी से आ जाइए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। और जी बातें हो रही हैं आज स्ट्रांग पीपल्स की। यस, नेल्सन मंडेला। देखें जी, उसने फेस किया था 27 ब्रूटल ईयर्स इन प्रिजन्स, वो बड़ी 27 साल जिंदगी के उसने आइसोलेशन फेस की, हार्ड लेबर और द लॉस ऑफ हिज फैमिली। इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस। आपके पास के कुछ ना रहे, ये बहुत बड़ा लॉस होता है जी।

बट नेल्सन मंडेला जो है, आपको पता है कि वो बहुत बड़ा नाम है, पावरफुल नाम है जी।

वेलकम बैक जनाब, ये राजरम शहजादी। तो जनाब, आजकल शादियां भी हो रही हैं। रात को मैंने देखा कि शादी भी हो रही थी। पहले शादियों पे टप्पे शप्पे गाया करते थे, अब नहीं गाते। रात को क्या होता था कि बड़ी आंटियां जो होती थी वो आ जाती थी। अच्छा, और कपड़े शपड़े भी जो पहनने, अब बस उस टाइम तो मतलब कि टाइम इतनी जल्दी पर लगा के उड़ गया कि गांव में, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि गांव की शादियों के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि मौसम कल बहुत मजे का था गांव में और मैंने सब्जी भी तोड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। चंद लम्हों में जिंदगी न जाने क्या से क्या हो जाती है। जिंदगी इतना वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, मुझे क्यों लगता है। आर यू गोना एग्री विद मी? आप सब लोग मेरे साथ एग्री करते हैं?

वेलकम बैक जी जनाब, आप सुन रहे हैं आरजे रमशहजादी को। जी बाहर मौसम कैसा है, एनीवन कैन टेल मी, कोई मुझे बाहर से बता सकता है? आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बाहर मौसम कैसा है? आई एम इन द स्टूडियो, मुझे नहीं पता। सुबह जब मैं आ रही थी तो मौसम बहुत मजे का था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सूरज नहीं था, बहुत हल्का सा धीमा सा सूरज था, ज्यादा नहीं था। इसलिए मुझे अभी कोई बताएगा कि बाहर मौसम कैसा है। 12:29 PM और आज बात हो रही थी अभी आप सब लोगों के साथ, पहले हमने बात की, थोड़ा सा प्रोग्राम को भी वाइंड अप करते जाएं कि प्रोग्राम में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने बात की थी जी, प्रोग्राम का जो पैटर्न था वो यही यहां से स्टार्ट हुआ कि जी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। ये ऐसा मैं भी कहती हूं और मेरे सुनने वाले जितने भी लोग हैं सब कहते होंगे जी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, हमें ही सारी मुश्किलें क्यों दे दी अल्लाह ने। तो उसके बारे में हमने बातें की, बिकॉज ऐसे लोग जो कि प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ है, जिनके अंदर बिल्ट इन है ये चीजें, उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। और हाँ, एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाह रही थी, जब कमलनाज हमारे साथ बात कर रही थी, वो हमें बता रही थी कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ चीजें जो है, कुछ पैटर्न अल्लाह ने भी आपके लिए सेट किया होता है, ऐसा ही है। तो उसमें मैं एक चीज आपको बताना चाह रही थी कि जब मैं स्टडी जो है वो कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स, मेरी जो भी दोस्तें थीं, उनकी लाइफ में, सबकी लाइफ में सहल और आसानियां भी थी कहीं ना कहीं। और मैं हमेशा ये क्वेश्चन किया करती थी कि बारी तला मुझे वो चीज़ वो आसानी से, मेरे तो ख्वाब भी बड़े मुश्किल हैं, ऐसा क्यों है? सो ये चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब समझ आ रही हैं, एकदम से कुछ भी समझ नहीं आता।

0: goes in. No. Junie. Junie ji. Japanese mein agar hum us time ko likhe to kya likhenge, kya padhenge? चलिए हम आपको बताते हैं. और जापानीज एक लैंग्वेज है. शुरू में मैंने बात की कि जापानी कौम जो है वो बहुत हिम्मत वाली है. देखिए जी, बहुत से लोग जब ये कहते हैं कि ये भी हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो करने के लिए बहुत कुछ चाहिए. और सबसे जो अहम बात, वो मुसलसल चाहिए. मुसलसल कोई भी चीज करते रहने से ही उसका रिजल्ट आता है. ऐसा नहीं आता कि एक दिन कर लें, दो दिन कर लें. हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था जी कि वो लोग, और मैं खुद को सबसे पहले इंक्लूड करती हूँ, कि जी मैं जो कि हम सब लोग शिकवा शिकायत करते हैं जी, सारे प्रॉब्लम्स, सारियां प्रॉब्लम, सारियां मुश्किल साढ़े वास्ते क्यों ने. तो जनाब, इसका बहुत जबरदस्त सा एक आंसर था कि अगर आप वो नहीं हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, अगर आप वो नहीं हैं, तो जो आप हैं वो उनके अंदर वो चीज नहीं है. तो आप उनका फ्यूचर और अपना फ्यूचर देख लीजिए. और मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि मैं स्कूल में जब पढ़ा करती थी तो मेरी कजन जो थी वो मेरी टीचर थी. अब वो मेरी फेंटी लगाया करती थी और मेरी दूसरी कजन की फेंटी नहीं लगती थी. यानी फेंटी मीन के डांट डपट, और सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम मैंने गुजारा. सो अब वो मुझे कहती है कि तुमने अब जो है ना, तुम कहाँ पे खड़ी हो, तुमने मास्टर कंप्लीट कर लिया. बट शी डिडंट डी एनीथिंग. मतलब उसने मैट्रिक भी जो है ना नहीं क्लियर किया और आपने ये काम कर लिया. तो कहने का मकसद ये कि आजमाइशों से गुजरते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन उसका जो एक मजा होता है सक्सेस का, वो एक बहुत ही अलग होता है. बहुत ही अच्छा, ग्रेट और क्लियर है जी. एसेंस एफएम की दुनिया के यूनिक बात करने वाले हैं जी. अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा है जी. उनकी बातें जो है वाकई बड़ी क्लियर होती हैं. ये उनकी जिंदगी का तजर्बा है. ऐसा थोड़ी है, कोई भी चीज आसानी से थोड़ी ना मिलती है. चीजों को हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं. ब्यूटीफुल शो कामरान मसूद कह रहे हैं जी, थैंक यू सो वेरी मच. आप सबके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया. बिकॉज 12:43 PM गोइंग टू 12:43 PM. आप देखें ना अभी पीछे एंड पे, आप एक पर्सनालिटी बनते हैं, आप एक रोल मॉडल बनते हैं, या आप कुछ भी करते हैं पीछे बैक एंड पे. वो कभी आपने कढ़ाई वाला सूट देखा है, कभी आपने ऐसी चीजें देखी हैं कि जो सामने फ्रंट पे आपको बहुत खूबसूरत नजर आ रही होती हैं, लेकिन उनके बैक एंड पे जो उनके धागे ताने बुने होते हैं वो बड़ी गुंजलवानी सी लगती है ना. पंजाबी की एक मिसाल है. तो ऐसा ही होता है जी, हर कंप्लीट पैकेज के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से रवैये होते हैं जिनको बर्दाश्त करना होता है, बहुत से ऐसे मुश्किल हालात होते हैं जिनको हमने फेस करना होता है. लोगों को बनी बनाई चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, और मैं कहूंगी कि हमारी जिन जी को बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं वो बनी बनाई मिली हैं. सो जितने भी पेरेंट्स मेरा शो सुन देख रहे हैं, उन सबको कहना चाहेंगे जी, आप सब लोग अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर गुजारें. जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में किया कि आपको अपने बच्चों के साथ इस समर वेकेशन थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें. जब आप ये कहते हैं कि हमारे बच्चे खराब हो गए, परेशान हो जाते हैं, तो जनाब आपने उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी तो गुजारना है. उनको पौधा लगाना सिखाइए, उनको घर की सफाई करनी सिखाइए, उनके साथ अपना टाइम गुजारना सिखाइए. अगर आप उनके सामने बैठ के वो सारे काम करेंगे जो वो आपके सामने अब बैठ के कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होना. फिर इसके लिए टाइम और मेहनत हर दौर में दरकार है. हाँ, थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में तब्दीली तो हो सकती है. सो जनाब, हम बिल्कुल भी किसी भी चीज से हिम्मत तो नहीं ना हार सकते, या हम हर चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये तो नहीं कह सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता. सब कुछ हो सकता है, रब की जात जब तक है सब कुछ हो सकता है. आई एम गोना ऑन अ लिटिल ब्रेक, टाइम चेक, आई विल बी राइट बैक.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, और देखो नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तावुन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। सूरह मायदा।
1: FM 100।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
2: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, price सिर्फ 64,49,000.

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे। मन माया

भी जाए कुर्बान हम 100 दफा जानम हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया तो

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तैद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हंडे। लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, प्राइस सिर्फ 64,49,000।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, काफिरो अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका, अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम न आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। सूरह अनफाल।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील, और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
10: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम
9: एंड एंड
3: क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
9: एंड
11: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: 100 where it's all about more barn burners.
13: Call my name and do his legacy.
12: favorite artists.
1: She thinks my tractor's sexy.
12: More fresh new country. This is country.
1: Come on, sweet thing.
13: 100.
14: And get all you want.

0: मकान जहां खाब वहां HBL।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
1: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।

0: टेस्ट ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: Broadcasting coast to coast, continent to continent, and around the world. This is the station, number one for all the hits. FM 100.

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: This program was brought to you by
1: Cool King.
2: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: कूल किंग।
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स, जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील, और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
3: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: एंड

0: 91.1 FM, your location for maximum music.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Cool King.
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा.
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
7: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
7: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
2: कूल किंग.
3: चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई.
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
8: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.

0: 800 FM, The Music Machine.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
3: कूल किंग।
4: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

0: dedication for maximum music.
1: This program was brought to you by
2: Live Lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
3: kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
1: And
4: Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
5: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: Mahirana Dekhbhal mein fitrat parwan chadti hai. Shobi single remedies maksoos herbal farms aur nabatati baagha se hasil ki jati hain taki aapko aisa mayar mile jis par aap mukammal bharosa kar sake. Dr. Hamid General Homeo aur Shobi Germany ke Pakistan mein 75 saal sirf sehatmand Pakistan ke naam.
7: Cool King.
8: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
9: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
7: Cool King.
8: Bijli ka bill dekha, aankhon ne double check kiya, phir bhi shock same. Isi baat, lekin BP high.
9: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
5: HBL Freedom Account ke saath अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ Islamic banking hai sab ke liye.
5: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Aaye ehd kare ki hum sirf Islamic banking ka intekhab karenge kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
5: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: Mustanad Ulama Ikram aur State Bank of Pakistan ki zair nigrani पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
10: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
12: Around the world.
13: FM 100. Assalamu alaikum Pakistan.
14: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap Special Quality ke taawun se.
15: Bismillahir Rahmanir Rahim. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: FM 100. 100.
2: सिवान स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: चुगले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: This program is brought to you by
2: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, price सिर्फ 64,49,000.
3: This is your music.